कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगर विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम की तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो सीयू का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मंगलवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक बार फिर से शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सुंदर और अति सुंदर भजन पैमला जैन के आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई और रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। लखबीर सिंह लाखा की आवाज में ये सुंदर भजन बस प्रोग्राम में

सुंदर सा भजन पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में लखबीर सिंह लाखा की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को स्वागत किया जा रहा है, वेलकम, और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन।

भजन आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में शर्मा जी की आवाज में अबकी बार ये सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में ये दूरियां गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई फिल्म का नाम था लव आजकल। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बेनी दयाल और शरारा पंडित की आवाज में ये गाना।

गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले हम आपको ले चलते हैं सोनू निगम की ओर। आज के इस प्रोग्राम में लव इन नेपाल फिल्म का नाम सोनू निगम प्रोग्राम में

सोनू निगम की आवाज में ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था लव इन नेपाल। उसी ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के ये प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। चले प्रोग्राम में शान की आवाज में शान की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611। इसी टारगेट नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। तो चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है एक बार फिर से आज की प्रोग्राम में शान की ओर हम आपको ले चलते हैं।
1: कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
2: जहाँ से मैं आया हूँ।
1: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
2: प्यार।
1: जस्ट अ टिप, हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, क्यों ना?

बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में शाम के बाद अनुराधा पोटवाल और उदित नारायण के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

ने सुना आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। क्यों?

बधाई हो, मुबारक हो रेडियो एसपीएस का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुन वालों, यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सबसे पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। और यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हूँ। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए जरूर आप सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में मिलकर सुनते हैं प्रसून मुखर्जी की आवाज में हेमंत कुमार का एक खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना पेश की गई हेमंत कुमार का खास गाया हुआ गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए द माइटी मुकेश प्रोग्राम में। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी नखमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। चले आपकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुनते

रेडियो SBS के जरिए। पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में आशा भोसले एन मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।

0: रेडियो SBS के जरिए ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों 7 मिनट बाकी है सुबह 9:30 में चले प्रोग्राम में। आज जबकि पहला तारीख सितंबर महीना का पहला तारीख है तो चले ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है किशोर कुमार की आवाज में।
1: दिन है सुहाना।

राधा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है। पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, पांच आने का दसाना, अरे वापस नहीं जाना, जाना जाना वापस नहीं।

SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। फरमाइशी इश्तिहारे जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी कामोकाज आपको पेश करवाना है, सस्ती दामों में आपके हर एक कामोकाज किया जा रहा है। सभी इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए 0325656560 टेलीफोन नंबर होता है। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर

0: आवास में गाना बस पेश की गई
1: है।
0: सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL श्री मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना।

The man with the every queen voice, Kishore Kumar. और खास तौर पर लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने।

और खास तौर पर लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर और लता जी की आवाज में एक और काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर की आवाज में

एक ही आवाज में गाना बस भी इसके गए फिर जन्म लेंगे हम। काफी प्यार भरी गाना आज के प्रोग्राम में भी इसकी गई पुरानी नखमे की प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो SBS के जरिए जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है मुकेश एन लता प्रोग्राम में। अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है मुकेश एन लता जी की आवाज में।

मुकेश और लता जी की आवाज में ये गाना पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम ये है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। महेंद्र कपूर आपकी बार प्रोग्राम में। महेंद्र कपूर

सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सक गए हैं। चले लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल तीफ।

सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना किशोर कुमार की आवाज में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम आपकी कसम। आपकी कसम फिल्म का नाम है, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में द मैन विद एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आपकी कसम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में आशा जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम

ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आज की ये प्रोग्राम भी जो पेश की गई है। चलिए एक फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं, जिस फिल्म का नाम है राजकुमार। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश होगा रेडियो SBS का आज की इस खास प्रोग्राम में। सुनने वालों, स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है, तार का नंबर है 030-262-6611। शहर उत्रेख हॉलैंड से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। मरहूम मोहम्मद रफी।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं, अपना अपना रिएक्शंस भी देते हैं। चले किशोर एन आशा जी की ओर हम आपको ले चलते हैं, एक काफी प्यार भरी गाना आपकी बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

आलू की सेवा में किशोर कुमार नाशा के बाद मुकेश और लता जी की आवाज में आज के प्रोग्राम में ये खास गाना पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम मेरे हम सफर। मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत गाना पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन।

पीसके गना कबूल किसी राह पे किसी मोड़ पे। फिल्म का नाम मेरे हम सफर। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। अब की बार एक काफी खूबसूरत गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, मरहूम मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में।

सफाई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याण।

मुलाकात मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज पे ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरों मीठे ये तमाम पुरानी नगमे आप सुनते हैं और काफी पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में अगली बार हम आपको ले चलते हैं। फिल्म का नाम है संगम। संगम फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

श्रिया जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में आपकी बार गाना जो पेश होगा अभिजीत और अलका जी की आवाज में। अभिजीत और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गायक निको और अभिजीत की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। गीत जो अब की बार पेश होगा अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में।

चौहान और अरिजीत सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

से ये गाना भी आपने सुना। सुनवलो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं। शान और श्रेया घोषाल प्रोग्राम में

रेडियो SBS के जरिए खूबसूरत गाना शाना और श्रेया घोषाल की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। अब की बार प्रोग्राम में जो पेश किया जा रहा है सभी सुनने वालों की सेवा में के आवाज में

रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो बीठे ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश

एक फिल्म जिसमें काफी खूबसूरत नगमे लाए गया है। इसी तरह से अभी आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार सानू जी के आवाज में गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई है। फिल्म का नाम दिल है तुम्हारा। चलिए अब की बार फिल्म धड़कन की ओर एक बार फिर से होगा। उदित नारायण, अलका याग्निक एंड कुमार सानू प्रोग्राम में।

film Dhadkan. उदित नारायण और अलका साथ ही साथ कुमार सानू जे की आवाज में ये गाना बस आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई. फिल्म का नाम धड़कन, उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना. रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना. स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11.

की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में प्रेम अगन फिल्म का नाम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई।

film Kadam. SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। Why should I stop being for Ladi and lose my Azadi? In short, first marriage rocks and then it is on the rocks. Conditions of life.

दर्शन की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा और उम्मीद है कि ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए उदित नारायण की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी अलका जी की आवाज में। अलका जी की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना। फिल्म का नाम सोल्जर।

इसमें ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अबकी बार बैनी दयाल एन श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Benny Dayal and Shreya ji ki awaaz mein ye gana bas program bhi pesh ki gayi aap sabhi aur sabhi sunne walon ki seva bhi. चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशिकिंग और साथियों की आवाज में. गाना का बोल है बारिश.

और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 2-3-2-2-6-6-11। पापोन प्रोग्राम में और पापोन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

अधूरी कहानी है। फिल्म का नाम पापोन के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू एनाल का प्रोग्राम में होगा।

अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। कुमार सानू एनालका

उसमें ये फिल्म एक रिश्ता उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ खूबसूरत नखमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हेमा सर देसाई एंड शंकर महादेवन की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

और शंकर महादेवन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सुनने वालों हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 03-265-65-60। इसी डार के नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं 24 पर दाग, यानी कि 24 घंटा लगातार ये तारगी नंबर आप सभी के लिए बस होता है। या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl। अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं। जरूर आप जाइए radio.sbs.nl वेबसाइट पर। तो चले प्रोग्राम में अबकी बार हरिहरन एंड चित्रा की आवाज में एक गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

0: reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आप अपना टिकट
2: जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ इंडिया।

देखिए आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम था दहलीज, उसी खास फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और आशा देखिए आवाज में। चले प्रोग्राम में फिल्म दारिंदा की ओर, यशुदास और कंचन की आवाज में एक खास गाना आप तक पेश किया जा रहा है। उससे पहले ये छोटा सा डायलॉग।

कीर्ति, कीर्ति, आखिर मैंने तुम्हें पाई लिया। कीर्ति, मैंने तुम्हें पाई लिया। तुम नहीं जानती कीर्ति, तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितने सालों से भटक रही थी। तुम्हारे बगैर जिंदगी का एक एक पल ऐसे गुजरा है जैसे सदियां गुजर गई हो, हजारों साल बीत गए हो। लेकिन कीर्ति, अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई, हम आपको ले चलेंगे किशोर कुमार की ओर और किशोर कुमार की आवाज में अब के बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना भी आपने सुना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पुरानी फिल्म दीदार। दीदार फिल्म का गीत आप प्रोग्राम में सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। किशोर कुमार की आवाज में एक और खूबसूरत गाना पेश

The Heart of the Millions, the Mighty Monkeez की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए मुकेश जी की आवाज में और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है और फिल्म का नाम पतंग।

में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, एक और बड़ी ही खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हम आपको ले चलेंगे मोहम्मद रफी की ओर। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और फिल्म का नाम फिर वही दिल आया हूँ।

रेडियो वेस में इसकी जरिए परमेश्वरी मोहम्मद रफी की आवाज में जो फिल्म फिर वही दिलाया हूँ उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तलत महमूद और लता जी की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0365656560। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल, दी यू फहार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ माना द वेबसाइट www.radiosbs.nl।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है, बहुत चाहती है।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार सानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरिहरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तुम के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आ जमा हिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जी ने करदा।

वो बारिश की बूंदे इज आउट द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड, अ फिल्म फन श्रद्धा कपूर एंड अर्जुन कपूर, एंड आउट द फिल्म प्यार तो होना ही था कॉम्ड गुसंग दौर आशा भोसले एंड विनोद राठौर, प्यार तो होना ही था द टाइटल सॉन्ग।

कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम। ओफो, वास आउट द फिल्म अजनबी एंड आउट द फिल्म 14 फेरे कंठ सहंदो रेखा भारद्वाज राम सीता संग द्वारे।

मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न जेले वस अर्द फिल्म लगान। एंड अर्द फिल्म प्यार तूने क्या किया कॉम्ट गेज़ोंग डोर सोनू निगम एंड अलका याचिनिक द टाइटल सॉन्ग।

सुना है तेरे दिल पे मेरे, कहीं ना कहीं नाम लिखा है इसका सॉन्ग दो श्रेया घोषाल एक वाम आउट द फिल्म सनक, आउट द फिल्म टाइगर जिंदा है कम दाग सॉन्ग दो आतिफ असलम दिल दिया गल्ला।

0: मुड़ जाऊंगा।
1: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
2: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
0: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
1: 6th of September, unforgettable 90s।
2: ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम
1: हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

0: खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचने की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है। धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर स्पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इस आयद फिल्म अजनबी एंड आयद फिल्म दबंग 3 कम खतों तो जावेद अली नैना लड़े।

अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज में आप सुनिए उर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

0: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में।
1: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में।
2: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
0: 6th of September, Unforgettable 90s।
1: शो आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
0: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
3: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, वॉज आउट द फिल्म बॉम्बे। एंड आउट द फिल्म दिल ही दिल में कम्स गसोंग दोर हरिहरन एंड स्वर्णलता। इम्तिहान हम प्यार का देखे, राह देखे, क्या है नतीजा, डोला डोला मन डोला।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।